पारिक अनक लख बरिया अनठोर नहीं जह जाता। चंचल मत चंचल मत पारिक बपुरे की सर्प अग्न कर मेल माता पिता कंठ लाए राखे।

इस्लाम वाले कहिंदे ने एक बड़ी भयानक नदी आउंदी है, उस दे उत्तों एक पुले सरात है। बाणी विच दा जिक्र पुरसलात करके आए, पुरसलात का पंथ दुहेला, वालो निकी पुरसलात कन्नी ना सुनी आए। पुले सरात तो पार करना पैंदा जिथे एक दे नाल दूजा बंदा नहीं लंघ सकता, इको नूं लंघना पैंदा। बड़ा भयानक पुल है, थले बड़ी भयानक नदी वग रही है, बड़ा सौड़ा पुल है। ओले उत्तों जिस वेले जीव पार हुंदा है ते जेड़े तां टिके लोग हुंदे ने, जपी तपी हुंदे ने, ध्यान वाले हुंदे ने, ओ सही जे लंघ जांदे ने, लेकिन जेड़े डोले लोग हुंदे ने ओ नहीं पार हो सकदे, राह च डिग पैंदे, ओ ऐसा कहिंदे। लेकिन आपां ओदी गल वखरी छड्डीए, इत्थे जीवन दी नदी पार करनी औखी होंदी। तित सरवरण है भईले निवासा, तन गुरु नानक कहिंदे ने ऐसे सागर च फस गए आ, पानी पावक दिने के, जिथे महाराज ने आप ही निरंकार ने आप ही पानी नू अग बना छड़े। पंक जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मैं ता घर कुंदे वेखे पैर नहीं पुटिया जांदा। ते जे इनू भी पार करना है, ओनू भी पार करना है, या इनू भी पार करना है, ते कोई ता प्रबंध करना पए। इसे जीवन विच ही प्रबंध करना पएगा, अगां दा भी करना पएगा, हुण दा भी करना पएगा। भगत फरीद जी ने वचन किया, वो कहते ने जिन्होंने वक्त नहीं ना संभालिया। शेख ब्रह्म फरीद सानी जिसले धन गुरु नानक मिले आए, उस वेले शब्द से गल चली, उन्हें अपने वड्डे फरीद का, फरीद शकरगंज का यह शब्द पढ़िया।

नानक कहे सहेलियो शौखरा प्यारा हम सह केड़िया दासियां साचा खसम मारा बड़िया प्यारियां असी ओनू लगदियां ओ सानू बड़ा प्यारा लगदा प्यार ना जदों बुलावेगा ता के जावां नेती बुलाउंदा प्यार नाल असी नित बुलाउने आ ओनू प्यार नाल जदों ओ फिर पक्की तरह बुलावेगा उदों भी प्यार नाल बुलावेगा अमृत बचन नाल बुलावेगा असी भी प्रसन्नता नाल ओदे कोल जावां पर ये कौन कर सकेगा जेड़ा जप तप दा बेड़ा बनन वाला और ये भागा वालियां नू ये जुगत प्राप्त होंदी है।

अपने गुरसिखा नजर आना, तेरा प्रताप तेरे गुरमुखा गुरसिखा नजर आना, तेरी सेवा करने वाले तू नजर आना। जेड़े जप तप करते हुए जीवन नूं किसे जुगत संजम च रखते ने, इत्थे साहब कहिंदे ने उन्हां लोकां दी ऐसी गल है, साध संगत कै आसरे प्रभ की प्रभ से रंग लाए, जीवन च औगन नहीं रहिंदे औगन कट, मुख उजला हर नाम तराए, जन्म मरण भौ कटेन फिर जोन ना पाए, अंध कूप ते काटेन लड़ आ फड़ाए, नानक बख्श मिलायन रखे गल लाए। पर उन्हां दी गल है जिन्हां नूं धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने जुगत बख्शी ते

यकीन है कि जदो तू मैनू अपना बनावेगा ते मैनू निवाजेगा, मैनू मान बख्शेगा। मैं तेरे दर ते आके तेरे अगे पुकार करदा हां, कि कृपा कर मैनू अपना।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समरथ ओ परिपूरन परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोतायो। मथुरा कहिंदा है पट के जद तक साडे भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सी, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साध सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो। उस गुरु नानक दे गुण जदो राजे जनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचते हैं कि कोई जपन वाला साड़ी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लैके देवते लैके अपनी पुरियां विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई, राजे जनक ने पुछया कौन रो रहे हैं, तो देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हैं जिथे पए हुए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोग दे, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तो भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तो भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता और तू बंदगी नहीं कीती ता तू अपने मनुखा जन्म नू कौडिया दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासा नू कौडिया दे बदले वेच छड़िया। ताई आखिया

राजे जनक ने आखिया देवतियां ने महाराज ए नरक और इत्थे पए जीवां ने नाम नहीं सी जपिया ना।

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोर प्राप्त होती है। कितने बड़े भाग होते हमारे, लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार है। ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

तो जागता है। गुरु सूरज के माफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद। दरवाजे खोल।

मैं जटा मूंड तारू, मैं जंगल च नहीं जाना रहांगा इस देश विच। मैं जटा मूंड तारू, ना मंदिर का सवार हूं। देश की रक्षा ना जटा वाले कर सकते ना मुंद्रा पाउन वाले कर सकते ने। हूं देश की रक्षा करनी पवेगी और मुकाबला करना पड़ेगा। ना जटा मूंड तारू, ना मुंद का सवारू, जपो तास नामन सरे सर्ब काम। मैं ओदा नाम जपांगा मेरे सारे कार्य पूरे हो जाने। जपो तास नामन सरे सर्ब काम, ना नहीं मचा। मैं अखा मीट के समाधि ला के लोगों नु लुटना नहीं। ना नहीं मचा, ना डिपन दिखाऊ, ना तो परमंग कमाऊ, ना पेठी कहाऊ। ना जटा मुंड तारू, ना मुंद्र का सवारू, जपो तास नामन सरे सर्ब कामन।

जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। लोग कैंची ना मुंदे है, ए धर्म दी कैंची ना मुनी जांदा, लोगन लुटी जांदा। जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। नासा मूंद करे प्रणाम, नासा मूंद के नमस्कार करन दिया। नासा मूंद करे प्रणाम, फोकट धर्म ना कौडी काम। ए कुछ हिस्सा राधा स्वामी च है कि इंद्रियां बंद करके ते अंदर कूं कूं सुननी। नासा मूंद करे प्रणाम, फोकट धर्म ना कौडी काम। फोकट धर्म जिते जग करी, नरक कुंड पीतर ते परी। हाथ लाए सुर्ग न जाऊ, एक्टिंग करनी अनेक प्रकार की। हाथ लाए सुर्ग न जाऊ, जो मन जीत सक

जे जे बाद करत हंकार, जे जे बाद बाद झगड़ा हंकार वाला झगड़ा जिसे होमे वधे। कई बार परमार्थ की विचार करदे हुए होमे वध जांदी, वेख्या ना मैं जित लिया, मेरे सामने कू नहीं सकिया, बोल नहीं सकिया, मेरे सामने ताकत नहीं पई कि दूजी गल कर सके, वेख्या जितिया। कहिंदे उथो रब उथो चला गया, जिसने आ चीज आखी ओदे कोल रब चला गया। जे जे बाद करत हंकारा, तिन ते भिन्न रहत करतारा, जान लियो हर जन मन माई, वेदक देव दिखे हर माई। ए झगड़ा मत करो, इत्थे ते रब है ही नहीं। वेदक देव दिखे हर माई, जान लो हर जन मन माही, आंख मूंद को डिंब दिखावे, अंदर की पदवी कह पावे, आंख मीच मग सूझ न जाई। ऐस दुनिया का रास्ता नहीं दिसता, अगला कौन वेखेगा। आंख मीच मग सूझ न जाई, ताहे अनंत में

जो था अब है और आगे उठ हुए हैं। पूछा महाराज तुहाडा गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह साहब नूं पूछा गया तुहाडा गुरु कौन है? कहंदे आओ मैं तुहानूं अपना गुरु दसा। कोट किंद्र करे जे के जिन्हें करोड़ा इंद्र बनाए ने, कोट के इंद्र करे जे के कई कोट उपिंद्र बनाए खपायो, दानव देव फनिंद तरा तर भूत भविख उपाय मटायो, आज लगे तपसा दिता है सिर ऊ ब्रह्मा किछ पार न पायो। आज तक शिवजी ते ब्रह्मा जिन्हों का तप करते ने उन्हों का अंत का पता नहीं लगा। आज लगे तपसा दिता है शिव ऊ ब्रह्मा किछ पार न पायो, वेदक देव वेदक देव ना भेद लख्यो जे।

चारों लगन ठगियो सब लोगन शीश जटा नख हाथ बढ़ाए जटा बना लिया ते हथां दे नौ बदा ले ते ध्यान ला के बैठ गए लोगों नू ठगन वास्ते ध्यान लगाए ठगियो सब लोगन शीश जटा नख हाथ बढ़ाए लाए बिभूत फिरियो मुखी उपर स्वाह मल लई लाए बिभूत फिरियो मुखी उपर देव आदे सबे डहकाए चंगे मारे सारे लुट ले मूर्ख ते सियाने सारे लुट ले इन्हें किसी ने छड्डिया ही तू क्यों धोखा खा गया कहिंदा चंगा पला मैं सियाना सा मेरी माती मारी गई ऐसे चलाक लोग समझे।

जे जे गौ सिंबिया पे मैं करत जगते गए महापुरुष कहू ना पछाना किसे नहीं पहचाननी कड्डी महापुरुष कहू ना पहचाना कर्म धर्म को कछु न जाना ना कर्म दस्या चंगा ते ना धर्म दस्या आख्या पूजा मेरी करो बस अवरन की आसा किछ नाई एक आस तरो मन माही कहंदे होर किसे दी आस ना रखो बिना अकाल पुरख तो अवरन की आसा किछ नाई एक आस तरो मन माही आन आच आस उपजित कछ नाई वाकी आस तरो मन माही कोई परत पुराण को कोई परत पुराण कान सख्त बचाए के फोकट धर्म निदान कोई कुरान की पूजा कर रहा है कोई कुरान पढ़ रहा है हजूर कहते दोवे धर्म फोकट ने और इन्होंने अंत वेले साथ नहीं देना कान सख्त बचाए के फोकट धर्म निदान कई कोट मिल परत कुराना बाचत किते पुराण आ जाना अंतकाल कोई कामना आवा दाव काल काहू ना बचावा

ताव ताल काहू न बचावा। क्यों न जपूं ताको तू पाई अंत काल जो है सहाई। क्यों न जपूं ताको तू पाई अंत काल जो होए सहाय। फोकट धर्म लखो कर परम इन खाली समझो। फोकट धर्म लखो कर परम इन ते सरत न कोई कर्म। ए तारनू प्रभ हमें बनायो। मैं तो दुनिया का हनेरा दूर करने वास्ते आया। कारण प्रभ हमें बनायो पेड़ पाख ए लोक पिठायो। आखो श्रीवा लिहाज करांगा केवल सच दा करांगा दूजे दा किस दा करना। ए कारण प्रभ हमें बनायो पेड़ पाख ए लोक पिठायो। पेड़ दस के जिम तिन कही सबन उचरो। जिवें मैनू मेरे वाहिगुरू ने कही है मैं सारे नूं कहण लगा मुखातब करके। ए चीज याद रखनी डिंब विंब किछ नायक ना करो। एक तुम्हें भेख नहीं करना और एक वह मिच भुलेखे च नहीं पैना। ए मैं बिल्कुल नहीं करना और ना सिख नूं करन देना। डिंब विंब किछ नायक ना करो। मैं ना भेख करना ते ना वहम करना। एक अकाल पुरख की ओट रखनी ते कहांगा कि लो प्यारे पे सारे तुसी कह लगे।

फिर करो भाई पूजा, फिर करोड़ रुपया इतने वार दिता जाए ना तो आ जरा सुख है उन्होंने नहीं लभ सकता जरा तो प्राप्त हो गया। आओ पे शुक्र विच आके धनवाद करिए, गुण गाइए, साडा आया हुआ सफला हो जाए।

और न यहे महात्म में अवतारी उजागिर यान कियो। तिनके दुख कोटिक दूर गे मथराज ने अमृत नाम पियो। एह मद ते मत चुके रे मन पेद बपेद न जान बियो। पर ताछर दे गुरु अर्जुन के हर पूरन ब्रह्म।

सत्संतों के तरियोरे आदि पुरख पर तख लिखो अखर मत की तुरे प्रगट ज्योत जग मगे तेज पू मंडल छायो पारस परस परस परस गुरु

काल होए मेरा स्वामी किस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं। पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ए प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

था है नरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना पारी। उस सहज अवस्था नूं प्राप्त करन वास्ते गुरमुख ने एक मंजिल तय करनी, किस रस्ते ते तुरना है। गुरमुख दा अपना एक रस्ता है, उस रस्ते दियां पैड़ां गुरु नानक ने छड़ियां ने। तुसां वेखिया है कच्चे राहां ते एक बंदा लंघ जाए ना उहदे पैरां दे निशान पैंदे, दूजा वह बंदा जिसने वह पासा कदे ना वेखिया होवे इधर उधर झाकदा, जिधर पैरां दे निशान नजर आउण उधर तुर पैंदा। पैरां दे निशान डबल हो जाण, दोहरे हो जाणगे। तीजे बंदे नूं इउं जापेगा जिवें इथों कोई एक नहीं कई जने लंघे, तीन बंदे चार बंदे लंघणगे पगडंडी बन जाए। जिसले तीन चार दे मगर लंघदियां लंघदियां उस पगडंडी ते लंघदियां लंघदियां सैकड़े बंदे लंघणगे ते राह बन जाएगा, जिसले हजारा लंघणगे ते शाहरा सड़क बन जाएगी। धन गुरु नानक ने तुहाडे वास्ते एक शाहराह दा मुढ बने, गुरमुख दे मार्ग दा मुढ बने। उस मार्ग ते गुरु नानक साहब भाई मरदाने नूं नाल लैके तुरदे ने पए, ते गुरु नानक साहब दे मगर भाई मरदाने दे मगर मगर किते राय बुलार तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते महाराज शिवनाभ तुरे जांदे नजर आउंदे, किते भाई भगीरथ तुरिया जांदा नजर आउंदा, किते भाई बूढ़ा जी जांदे नजर आउंदे। इन्हां सारिआं ने मिलके गुरु नानक दे मगर तुर तुर के इस पगडंडी नूं शाहराह दा रूप दित्ता है। साडे वास्ते बनी बनाई सड़क है, गुरमत गाडी राह है। इस गाडी राह ते तुरन वालिआं ने एक मंजिल ते पहुंचना है। जिहड़ा बंदा उस मंजिल ते पहुंचण दी तीव्रता लैके नहीं तुरदा, हौली चाले तुरदा या तुरदा ही नहीं, उस बंदे नूं सोचना चाहिए। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने बड़ी प्यारी गल कही, वो कहिंदे ने

0: सामने होता है। महाराज कहते ने मकसद पूरे हो जाने, जेड़ा इच्छा रख के पढ़ेगा ओदे मकसद पूरे रख। महाराज कहते ने जो विचार सहित पढ़ेगा सो ज्ञानवान होगा, जेड़ा बाणी नू ध्यान नाल विचार के पढ़ेगा वो आप बंदा बड़ा समझ वाला अकलमंद ते प्रभु नू समझन वाला हो जाएगा। विचार सहित पढ़ेगा सो ज्ञानवान होवेगा, प्यार सहित पढ़ेगा सो मेरे नेड़े होवेगा, श्रद्धा सहित पढ़ेगा सो प्रभु के नजदीक होवेगा। गुरसिखा ने प्यार नाल भी पढ़िया, श्रद्धा नाल भी पढ़िया, विचार नाल भी पढ़िया, इच्छा करके भी पढ़िया, लेकिन सब तो श्रेष्ठ वो है कि विचार सहित और श्रद्धा सहित कट्ठा पढ़िया जाए। विचार ते श्रद्धा जिथे रल जान उथे गुरमुखताई गुरसिखी शुरू होंगी। भाई साहब पूजा तो होगी गुरसिख की, धन गुरु नानक जिस वेले सारसराय को पहुंचे ने पहुंचे तो किस तरह आप जानते, भाई मरदाना हीरा लैके पहुंचे। सारसराय ने 101 रुपया उस हीरे की भेटा रख दी, कहता मैं मुल नहीं पा सकता, हालांकि मुल पाने वाले ने गाजरां मूलियां भी पाया, मठियाई का शेर देने भी तैयार सन, मगर जौहरी ने मुल नहीं पाया। कह लगा एडा कीमती हीरा का मुल नहीं पाया जा सकता, 101 रुपया भेटा दे सकना, मेरे बुजुर्गों ने कहा कदे एह जा हीरा वेखे ते भेटा रख दे। भाई मरदाना भेटा लेके पहुंचे, एक दो फेरे भाई मरदाने के बचे सारसराय महाराज के चरणा च हाजिर होया, अपने नौकर नू नाल लेके दुकान बंद करके महाराज के चरणा विच आ गया। बड़े वचन विलास हो, कई दिन महाराज फिर एदे घर विच टिके। ओही सारसराय धर्म सारसराय जौहरी दी धर्मशाला मुड़के साहब कलगीधर पातशाह दा जन्म स्थान बन गई। पटना साहब विखे पवित्र स्थान ते महाराज कुछ दिन टिके। ओह कुछ दिन टिकिया टिकिया सारसराय दे नौकर अधरके नू ज्ञान हो गया, ओनू मस्तियां प्राप्त हो गई। सारसराय ने वेखिया कि मेरा नौकर इस वेले बड़े उच्चे मंडलों च उडारियां ला रहे, हथ बन के कह लगा साहब नू, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नू कह लगा, पातशाह आपने अपने सेवक ते मेहरां कीतियां ने, मेरे इस चाकर ते मेरे इस नौकर ते बड़ी कृपा कीती है, इनू ज्ञान बख्शिया, इनू नाम बख्शिया, इनू बड़ी उच्ची सुरत बख्शी है, मेरे ते भी कृपा करो। धन गुरु नानक कह लगे भाई असी तां हुण चले आ, हुण तू एदे चरणी पै जा, ध्यान दे, हुण तू एदे चरणी पै जा। कह लगा महाराज नौकर दे चरणी पाउंदे हो मालिक, मेरे कोलों लै के खांदा है। धन गुरु नानक हस पै, कह लगे रुपये तेरे कोलों लै के ए खांदा रहा, नाम एदे कोल लै के तू लै लै, ऐस वेले नाम वलों ए धनवंत है रजिया होया, ए तैथों पहला प्राप्त करके रजिया होया, रुपये तेरे कोल सन ते मंगदा रहा लैंदा रहा चाकर बनिया रहा, लेकिन जे नाम लेना ही भाई असी तां चले आ सारसराय, जे नाम लेना एदे कोल हैगा।
1: You're listening to Seek That Radio.

लेकिन इतने महाराज कहते ने कि भटकना थक गई, थका देने वाली गल थक गई, श्रम थक गई। अरे उन्हां दी गल है जिन्हां नूं साहिब ने अपनी बाणी दे लड़ लाया है, अपना जस बख्शिया है।

गुरबाणी बनी है। सतगुर कीरी से होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कुड़िया।

दिमाग ते गल्लां दा बोझ पा रहे। उल्टी बेस्वादी खड़ी कर ली, मैं गुण गल्लां कह सिर भार, कल्ली गल्लां सिरजनहार। जे गल्लां दा ही रस लैना ते सिरजनहार दियां गल्लां च बड़ा रस। खाना पीना हसना बाल जेड़े निके निके स्वाद बने हुए ना, ए सारे बेकार ने। जब लग रिदे ना आवे याद, जे वाहिगुरू चेते चली ना, ए स्वाद बेस्वादी च बदल जाते। हां तो परवाह के ही क्या कीजे, जन्म जन्म किछ लीजी लीजे। जिन्होंने इस जन्म का मकसद पूरा किया है, भाव सिमरन किया है, उन्होंने किसी की कोई परवाह नहीं, कोई लेखा पूछने वाला नहीं। हां जेड़े टुटे हुए ने, बेकार दियां गल्लां च बेकार दे रसां च पए ने, मन की मत मन की मत पिछे लगे, मता गल मता मते हाथी वांगू झूमते तुरे जाते ने, पता ही नहीं की कर रहे हैं। जो कुछ बोली है सब खतो खता, जो गल करते ने गुनाह बन जाती। फिर क्या मुंह लै की चाहे अरदास, पाप पुन दो साखी पास। जिंदगी च पुन्ना दी अणहोंद ते पापा दी होंद, ये अरदास करन जोगा मुंह भी तो नहीं रहन दिंदी। की मुंह लैके अरदास करांगे प्रभु दे दर, बख्शे जान दी अरदास करन जोगे भी तो कोई ना रह। क्या मुंह लै की चाहे अरदास, पाप पुन दो साखी पास। बेवसी भी दसी है, जैसा तू करे तैसा को होए, तुद बिन दूजा ना ही कोए। जे ही तू मत दे ते ही को पावे, तुद आपे पावे, तिले चलावे। पर नाली प्रेम

साहिब गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, जिथे सारिया भगतां नूं सन्मानिया उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करदे ने, कहंदे ने हे प्रभु ए संसार एक समुंदर है, ते समुंदर विच कहंदे ने जदों देवतियां ने समुंदर नूं रिड़किया ते 14 रतन कढे, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पानी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ए संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करदे ने, कहंदे ने हे मालिक

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावा। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते बना।

ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीता, जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानो कलयुग जीवां नूं उपदेश देंदे होए ए गल समझांदे ने, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नूं भी माड़ा आखिया? ओ ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं है। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगयाई नाल हुंदा है, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनूं चंगा नहीं आखदे। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असी अपने आप नूं चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे ने हम अवगुण भरे एक गुण नाई। हे मेरे पातशाह, मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा हां।

सब तो वड्डा अवगुण की है कि मैं अमृत नूं छड्ड के बिख खाई जा रहा। हे परमात्मा, जो तू अमृत की दात दिती मैं वह भी हासिल नहीं की, केवल बिख चखी जा रहा। एदू वड्डा होर अवगुण केड़ा हो सकता है। फिर कहिंदे ने माया मोह परम पै भुले, माया दे मोह विच पै के परमा विच मैं भुलिया फिरदा हां। माया मोह परम पै भुले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। सुत कहिंदे ने पुत्र, दारा कहिंदे ने इस्त्री। हे मेरे मालिक, मैं तेरे नालों प्रीत तोड़ के, तेरे नालों प्यार छड़ के, मैं अपना प्यार अपने पुत्र तियां नाल ते घरवालियां नाल लाया हुए।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इन्हां विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा असीं तेनूं भुलाया होया।

हे मेरे राम, ए साडे नीवे करम, मंदे पाग मैडे करम, तू सानू बख्श ले मेरे राम। ए नीच कर्म हर मेरे, इना कुकर्मा विच पै के असी अवगुण ते कठे कर रहे ने, साडे अंदर गुण कोई भी नहीं पैदा होया। मैं कई बार बेनती करिया करदा, आपा जद गुरु दरबार आईये ना, उदो कोशिश करिया करिए कि हाथ बन के बेनती करिया करिए, हे परमात्मा तू कर कृपा, मैं थे एक अवगुण छड़ जावा ते इथो एक गुण ले जावा। क्योंकि एक एक अवगुण छड़ी जावांगे, एक एक गुण ग्रहण करी जावांगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अवगुणा दा नाश हो जाएगा, गुणा दी प्रवृत्ति हो जाएगी। पर जे आपां कोशिश करिए ते तां ही ना। हुण तुसी देख लो, बच्चे नूं असी नर्सरी च बिठाने आ पहली क्लास विच, उस तो बाद अगे वो एक दो तीन करदा करदा किथे तक पहुंच जांदा है। बस इंज समझ लो कि अज असी नर्सरी च आए आ ते गुरु नानक दे स्कूल विच पढ़ना है, ते जिस वेले गुरु नानक पढ़ा रहे होण बैठे, उदो पढ़दियां कोशिश करिया करिए, मालिक एक सबक रोज दे दे, एक सबक रोज चाहिदा है। जे एक एक सबक करदे आ असी उस गुणा नूं ग्रहण करना शुरू कर दिता, एक दिन गुण ही रहणगे, अवगुण नाश हो जाणगे। क्योंकि गुरु नानक दा दर ऐसा है, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण। ए ते निर्गुणा नूं गुणवान बना दिंदे हन, ते इस दर ते आके भी असी अवगुण नहीं छड्डदे। ध्यान देना, अवगुण नहीं छड्डदे, बल्कि असी आउणा छड्ड दिंदे। कहिंदे ने एक व्यक्ति एक तीर्थ ते गया, ते तीर्थ ते बैठिया मुखी पंडित ने आखिया, हे भाई तेरे इथे बुजुर्ग भी आया करदे सन, तू भी आए, ओ जदों भी आउंदे सन कोई ना कोई अवगुण छड़ जांदे सन, कोई ना कोई चीज छड़ जांदे सन, प्रण करके जाया करदे सन, ते तू भी कुछ प्रण कर जा, तू भी कुछ त्याग दे, तू भी कुछ छड़ दे। कहिंदा तुसी हुक्म करो की छड्डा। कहिंदे ने हुण पंडित जी ने कुछ वस्तुआं कुछ चीजां दे नां लै की छड़ सकता है। जिस वेले आज उन्हां ने वह अवगुणा का ना लिया कि इन्हां विचों कुछ भी छड़ दे, ए व्यक्ति ए प्राणी कहिंदा, कहिंदा पंडित जी जिहड़ियां गल्लां तुसी छड़न लई कह रहे हो मैं ए ते नहीं छड़ सकदा, हां ए हो सकदा है मैं इत्थे आउणा ही छड़िया, मैं दोबारा नहीं आवांगा। ऐसे भी व्यक्ति हन, वह अवगुण नहीं त्याग दे, आउणा छड़ दिंदे ने। कई कई बार औखे हो जाते ने कि सच की गल सुनीए, क्यों कौन हुंदा कोई सानू सच कहण वाला, आपां जिवें चल रहे हां ठीक है, नहीं भाई इस गुरु दे दर ते आए हां, आपां कोशिश करिए एक एक अवगुण त्यागण दी, ते गुरु सानू गुण देवेगा। ते ऐसा नहीं ना करांगे, धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने हर बिसरत तेरे गुण गलिया गल जाणगे। इसलिए साहब कहिंदे ने मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे, ते गुणवंता मैं ते अवगुण हारा तेरे दर ते आया। हे मेरे मालिक तू गुणवान है, तेरे अंदर गुण हन, ते तू साडे ते कर कृपा।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर किरपा बख्श, तुसी करो किरपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर किरपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनु अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर दे सा सामने वालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जाना। हम ऐसे तू ऐसा, आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे कते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुर ख्याल देंदे हुए कह

अवगुणहारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना, आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना, परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तू किन्ना दयालु है,

फिर मैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे कोल अवगुण बख्शा लैने ने। इसलिए भाई आओ आपां उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए, गोबिंद हम ऐसे अपराधी, गोबिंद हम ऐसे